0: dagsangi jarangi tatpanang jindigrim sanazat sngaji akashwani leni jindigtan sngato chuchu gyat chadu kasata akashwani dilli ne samacha prabhat tang morning news sanazat
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
5: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
6: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
7: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानसीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
4: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
8: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
9: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
10: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
11: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
12: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
13: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
4: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की चार दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat waves over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
15: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including ministries of railways, home affairs, health and family welfare, and Department of Higher Education, among others. With Dipendra Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
14: The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI, in its release, said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. US Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata today on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step in strengthening bilateral ties between Washington and New Delhi. The visit is expected to focus on expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the airport. The U.S. Department of State said during his stay in Kolkata, Mr. Rubio will visit Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity, and the children's home in the city. Mr. Gore, in a social media post, said, later in the day, U.S. Secretary of State will travel to New Delhi and call on Prime Minister Narendra Modi. According to the U.S. ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue, Quad, framework.
16: President Draupadi Murmu has said there is tremendous potential for cooperation between India and Cyprus in new and emerging sectors such as semiconductors, space and artificial intelligence. The president was speaking after hosting a banquet in honor of a Cyprus counterpart, Nikos Christodoulidis, and his delegation at Rashtrapati Bhavan yesterday. She said technology and innovation have emerged as key forward-looking areas of the bilateral relationship.
7: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानशीपुर की मित्रता आपसे सम्मान साझा मूल्य विश्वास और एकजुटता पर आधारित आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
16: प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस निकोस क्रिस्टोदुलिदिस आल्सो हाइलाइटेड द फ्रेंडशिप विद इंडिया।
17: Cyprus and India appear geographically separated by thousands of miles. They differ slightly in size and population, and yet there is an invisible thread that has woven our countries and our people together and has seamlessly connected our countries for centuries.
16: Indian Army officer Major Abhilasha Barak, serving with the United Nations peacekeeping mission in Lebanon, has been honored with the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award for 2025. We have a report.
18: Major Barak is currently serving with the Indian Battalion as commander of the female engagement team in the United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. The recipient is selected annually from nominations submitted by force commanders and heads of mission across UN peacekeeping operations worldwide. With this recognition, Major Barak becomes the third Indian peacekeeper to receive the honor. Earlier, Major Suman Gavani was awarded in 2019 for her service with the UN mission in South Sudan, while Major Radhika Sen received the award in 2023 for her work with the UN Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. India remains one of the largest contributors of troops and police personnel to UN peacekeeping missions across the world. Swati Rukheja, Akashwani News, Delhi.
16: The Indo-Tibetan Border Police, ITBP, has successfully completed its first ever all-women international mountaineering expedition to Mount Everest, marking a historic milestone in the force's mountaineering achievements. We have a report.
19: A 14-member team of ITBP comprising 11 women climbers and 3 technical and support staff summited the world's highest peak on 21st of this month through the South Col route from Nepal side. The expedition was flagged off from the ITBP headquarters on 19th of April. As a part of its Clean Himalaya Save Glacier campaign, the team also carried out environmental awareness activities and collected non-biodegradable waste from the Everest region. Union Home Minister Amit Shah congratulated the team for unfurling the national flag atop Mount Everest. Mr. Shah said that by achieving this remarkable feat in extreme terrain and harsh climatic conditions, the team has upheld ITBP's motto of nation before self. Meanwhile, with this achievement, ITBP has now completed 232 mountaineering expeditions, including 5 successful Everest summits. The force has also scaled 6 of the world's 8,000-meter-plus peaks, including Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Makalu, Mount Lahotse, Mount Dholagiri, and Mount Manaslu. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
16: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. As part of our series, People's Padma on Akashwani, in our upcoming episode, we speak to N. Rajam, a renowned violinist. She will be honored with the prestigious Padma Vibhushan.
20: मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, जिसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात। मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
16: To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today at 9:10 a.m. You can also listen to this conversation on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Petrol and diesel prices were increased by up to 91 paise per litre today, marking the third hike in less than 10 days. In Delhi, petrol price has been increased by 87 paise to 99 rupees 51 paise per litre, while diesel has gone up by 91 paise to 92 rupees 49 paise per litre. This is the third revision in fuel rates in recent days. The increase comes amid a sharp surge in global crude oil prices following the Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. Meanwhile, Ministry of Petroleum and Natural Gas has said that India has adequate availability of petrol and diesel and supplies across the country remain stable. In a social media post, the ministry advised citizens to avoid panic buying and to purchase fuel only as per actual requirement. The ministry further stated that responsible consumption and public cooperation will help ensure smooth fuel availability for all during the ongoing high demand period. The Madhya Pradesh government has taken an important step towards Uniform Civil Code UCC. Chief Minister Mohan Yadav launched the website ucc.mp.gov.in at the Secretariat yesterday. Through this portal, citizens, political parties and social organizations can share their views and suggestions on the proposed UCC. The last date for submitting feedback is 15th of June this year. The India Meteorological Department, IMD, has issued red color warning for severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. IMD has also issued orange color warning for heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha during the next 5 days. Meanwhile, Madhya Pradesh continues to reel under intense heatwave conditions. We have a report from our correspondent.
0: The Met Department has issued heatwave warnings in 42 districts today. Tikamgarh, Chhatarpur and Panna are the worst affected. All three are under red alert. Gwalior and 20 other districts are under orange alert for severe heatwave. Bhopal, Indore and 16 other districts are under yellow alert. Yesterday, the temperature crossed 44 degrees Celsius intensity. Nugam in Chhatarpur district was the hottest place in the state. The mercury touched 46.8 degrees there. The biggest worry is that Notapa has not even begun yet. Notapa starts on May 25th and lasts for 9 days. The Met Department says the heat will remain at its peak till May 31st. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
16: In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad, SRH, defeated Royal Challengers Bengaluru, RCB, by 55 runs in Hyderabad last night. Chasing a massive target of 256 runs, set by SRH, RCB could manage to score 200 runs for 4 wickets in 20 overs. Rajat Patidar was the top scorer with 56 runs. For Hyderabad, Ishan Malinga claimed 2 wickets. Earlier opting to bat first, SRH posted 255 for 4 in their stipulated 20 overs. Ishan Kishan was the top scorer with unbeaten 79 runs and so he was named player of the match. Today, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow at 7:30 this evening. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
21: Thank you, Sunil. The Asian Age leads with the headline, India Cyprus Inc. Six Packs Boost Trade Security Ties. The Reserve Bank of India Central Board has approved a record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to the government for financial year 26, reports the Economic Times. In its editorial piece titled She Putin Meet, a new axis in the making, the Pioneer argues that the recent summit between Xi Jinping and Vladimir Putin signals a deepening China-Russia alignment with potentially major consequences for the global order. The piece suggests that Beijing and Moscow are moving beyond symbolism and toward a more coordinated challenge to American influence. It concludes that the emergence of such an axis may become one of the defining geopolitical development of our time. And finally, in a bold push to boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
16: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: Ngaje Akashvani leni junjiktangin sngato chuzo gyathang pechaduk kasata tashirinchen tang siring dolkar ngiske salkane lurik sanjasla phulen.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.

0: ibu akashwani le in kasate yangchen dolma na natsul sanajat ladakh si doton gunisko la sub committee chokspe nang asungro chakan beka apex body tang kd uskyong guni itchins pongon chuwa jate otenok rengiske zungre le salpeli ge jikspel te yot kan nang ashat kan nang jin da et chokspe ring la ladakh se nang memans manglu si jung yangsker khongches tang sa team se shungskyop tang ches nagaland sikkim tang mizoram guni nang ayot kan ne chok la team si angtangs sumgya tonchu tonchik afng tangches la in principal ithokne lotun songte yot juste nok chokspe nanga apex tang kd uskyung gunis ladakh se doton gun bora chatte nok yang selpel ige nang jin sojungi nai lon khung ispon bo gun tang ladakh se uskyung guni parla ladakh se doton ni toga tonsa sacha ni ka in principal nanga lotun chakan gun chara jate ote nok ibo nang jin team choches bajar tang pene do song choche ᱪᱮᱥᱛᱟᱝ ᱞᱟᱥᱤᱨᱤᱱᱟ ᱠᱷᱚᱝᱪᱮ ᱥᱤᱵᱟᱝᱪᱟ ᱢᱤᱢᱟᱝ ᱥᱤᱞᱫᱟᱢᱥᱠᱟᱱᱤ ᱩᱥᱠᱤᱭᱚᱝ ᱞᱟᱜᱟ ᱭᱚᱝ ᱪᱮᱥᱛᱟᱝ ᱩᱡᱩᱝ ᱟᱡᱫᱮᱞ ᱫᱟᱱᱤᱠᱟ ᱴᱷᱤᱢᱡᱚ ᱥᱚᱠᱥᱯᱟ ᱡᱤᱠ ᱪᱚᱠᱥᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱮᱥᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱪᱤ ᱛᱮᱛᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱡᱩᱝ ᱤᱥᱯᱚᱱᱵᱚ ᱪᱮᱱᱢᱚᱜᱩᱱ ᱩᱡᱩᱝ ᱟᱡᱫᱮᱞ ᱫᱟᱱᱤ ᱢᱤᱢᱟᱝ ᱠᱩᱱᱤᱞᱫᱟᱢᱥᱠᱟᱱᱤ ᱩᱥᱠᱤᱭᱚᱝ ᱥᱚᱭ ᱭᱚᱜᱟ ᱭᱚᱝ ᱪᱮᱥ ᱠᱩᱱᱤ ᱛᱚᱱᱪᱟᱱ ᱜᱩᱱᱤᱠᱟ ᱪᱷᱚᱠ ᱱᱤᱥᱠᱮ ᱞᱚᱛᱩᱱ ᱪᱷᱚᱠ ᱞᱟᱵᱟᱵ ᱥᱤ ᱤᱱᱚᱠ ᱡᱩᱥᱛᱮ ᱛᱮᱱᱚᱠ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱚᱞᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱮᱞᱚᱱ ᱠᱩᱱ ᱤᱥ ᱞᱟᱫᱟᱠ ᱞᱟ ᱜᱮᱞᱠᱟ ᱪᱟᱛ ᱫᱟᱠᱥᱮ ᱛᱩᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱱᱪᱤᱥ ᱢᱮᱛᱠᱟᱱᱤ ᱜᱩᱱᱪᱟᱱ ᱜᱩᱱᱥᱟᱫᱟ ᱡᱟᱛᱤᱭᱚ ᱛᱮᱱᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱫᱟᱠ ᱞᱟ ᱫᱟᱠᱥᱮ ᱨᱤᱝ ᱞᱟ ᱭᱚᱝᱜᱚ ᱧᱩᱱ ᱭᱚ ᱪᱮᱥᱯᱮ ᱫᱚᱥᱩᱝ ᱥᱯᱮᱨᱱᱟ ᱞᱟᱥᱪᱮᱛ ᱯᱟᱜᱩᱱᱤ ᱯᱷᱚᱠᱥ ᱜᱩᱱᱫᱟᱱᱰᱟ ᱪᱩᱝ ᱧᱮᱱᱪᱤᱥ ᱢᱮᱛᱠᱟᱱ ᱜᱩᱱᱤ ᱜᱩᱱᱪᱟᱱ ᱜᱩᱱᱥᱟᱫᱟ ᱡᱟᱛᱮᱱᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱝᱜᱚ ᱛᱮᱛᱮ ᱜᱮᱞᱠᱟ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱜᱚᱡᱫᱚᱢ ᱜᱩᱱᱫᱟᱱᱰᱟ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱜᱮᱞᱠᱟ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱛ ᱛᱟᱝᱪᱤᱥ ᱤᱱᱚᱜ ᱢᱚᱞᱛᱮ ᱥᱚᱡᱩᱝ ᱮᱱᱟ ᱞᱚᱱ ᱠᱩᱝ ᱤᱥ ᱞᱚᱱ ᱠᱩᱝ ᱤᱥ ᱯᱚᱱᱵᱚ ᱜᱩᱱᱤᱥ ᱞᱟᱫᱟᱠ ᱥᱮ ᱩᱥᱠᱤᱭᱚᱝ ᱜᱩᱱᱞᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱡᱟᱛᱮᱱᱚᱠ ᱞᱟᱫᱟᱠ ᱥᱮ ᱩᱥᱠᱤᱭᱚᱝ ᱜᱟᱱ ᱵᱟᱥ ᱠᱩᱡᱟᱯ ᱛᱩᱞᱛᱟᱱ ᱥᱮᱵᱟᱝᱤ ᱰᱤᱰᱤ ᱱᱤᱭᱩᱥ ᱰᱮᱞᱤ ᱛᱟᱝᱭᱟᱢᱯᱚ ᱥᱚᱠᱥᱯᱟ ᱤᱛ ᱥᱤᱱᱥᱯᱚ ᱜᱩᱨᱠᱟᱱ ᱤᱥᱠᱚᱞ ᱞᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱡᱟᱛ
1: सरकार के सामने रखा और जो जो कंस्ट्रेंट था वो सारा डिस्कस हुआ और गृह मंत्रालय की तरफ से जो एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज है लगा यूटी जे एम के यूटी के उन्होंने पूरी तरह से अच्छी तरह से सब लोगों के सामने रखा महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सहमति बनी है एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ है आज की मीटिंग में ये सारा डिसीजन हो पाया तो ये मैं समझता हूँ लद्दाख के लिए बहुत ही हिस्टोरिक दिन रहा है आज का और जितने भी पार्टिसिपेंट में उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ बहुत ही लॉजिकल तरीके से डिस्कशन यहाँ पर मुकम्मल हुआ
0: Changtang Zongspon Niti Rajo Re Durbuk Sub Division Nizis Kor Zate Yargya Silas Kunla Zik Sa Zate Nok Yang Sanan Si Mimans Kun Tang Nyan Po Jal Zam Zate Nok Itus Mimans Kun Ni Zongspon La Doton Gun Ni Skol La Tanskuli Ige Jigang Salte Nok Kong Izlas Kun So Si Spon Bo Gun Tang Nyan Po Shkerjib Sokspa Jik Boda Zate Yotus Yuljong Si Nang Yargya Si Charji Kun Tu Si Ka Dup Chuk Chez La Kaspel Te Nok Zongspon Is PHE Tang Tse Ka Laschit Pa Gun Ni Piat Transkasa Talik Ti Toga Quarter Sajang Zate Yotkan Bo Tatok Salena Zate Nuk Yang Tangtse Ka Sakya De Laskun Ika Ek Pet Ma Kinami Lasgul Nangjin Laksuk Tukche Si Lasgul Jigang Zate Nuk Nubre Zongspon Mukul Bini Wali Nubre Nanga Kimsa Metkan Choche Si Sonas SRMC Ziskol Zate Nuk Yang Zongi Nanga Yuli Timskung Chenme Tin Metkan Choche Si Skola Tim Laglena Kyongche Si Skola Shkajib Zate Nuk Itu Skoryang Si Sonas Kuni Nanga Kimsa Kun Sirka Nangjin Metkan Choche Si Toga Sungre Zate Nuk Zongspon Is Sangra Tang Kimsa Kun Sirka Nangjin Metkan Choche Si Lasgun Ang Tangpe Ka Yongche Si Ka Shet Salin Jik Tang Delo Laskung Is Ponbo Gun Las Koryang Si Sonas Guni Ka Jung Junga Zik Tokle Ni Jukche La Kaspel Te Nuk Tena Tsogla Zongspon Is Kimsa Lenka Ni Motor Kolo Tu Si Ka Kerches Tang Nasa Gun Laksmo Yongche La Kaspel Te Nuk Yang Tsokspe Nanga SRMC Kimsa Peche Si Nase Ka Logo Dijabtok Yongche Si Skol Lang Sungdo Sa Te Nuk LASTSSRB Graduate Lani Ka Konas Kun

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
3: ओह लवली, वेल डन।
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
3: आप कौन?
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: कसता एक फूल दो माली फिल्मलू, आशा भोसले तंग मोहम्मद रफींग इसका ने संचसला फुलिन, लूज तुमकन प्रेम धावन यंग लुयांग श्रीकन रवि।
8: ये पर्दा हटा दो।

दक्षिण जरंग सोतन फिल्मलु आशा भोसले ने सनजत सवन कुमारे लुआ यंग रिकन इनपिन उषा खन्ना कसता जुग गया आसमा फिल्मलु लता मंगेशकर ने संचसला फुलिन लू सुमकन हजरत जयपुरी यंग लु यंग रिकन शंकर जयकिशन

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कसता तीन देवियां फिल्म लू लता मंगेशकर तंग किशोर कुमार ने सनाजदीन मजरू सुल्तानपुरी लुआ यांग रिकन एस डी बर्मन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की ये पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार ये वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक विशेष न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी मजदूरों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके पास अवैध दस्तावेज में ये मजदूर तिरुप्पुर जिले के पल्लडम के एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र भी पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया गया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में भी कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतरोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है विश्व दर्पण। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर, प्रधानमंत्री मोदी से आज नई दिल्ली में मुलाकात। ट्रंप प्रशासन ने अस्थायी वीजा पर रह रहे और ग्रीन कार्ड लेने के इच्छुक आवेदकों को अपने देश से ही आवेदन करने का नया नियम जारी किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के प्रकोप के खतरे को राष्ट्र स्तर पर उच्चतम बताया। और भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है। भारत रवाना होने से पहले श्री रूबियो ने भारत को एक महान सहयोगी और साझेदार बताते हुए कहा कि भारत के साथ कई क्षेत्रों में काम करना है। ट्रंप प्रशासन ने अमरीकी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। प्रशासन ने अस्थायी वीजा पर रह रहे और ग्रीन कार्ड के इच्छुक आवेदकों को अपने देश से ही आवेदन करने का नया नियम जारी किया है। इसके अनुसार स्थायी निवास चाहने वाले विदेशी नागरिकों को अब आवेदन करने के लिए स्वदेश लौटना होगा। अमरीकी नागरिकता और आवेदन सेवा के अनुसार अमरीका में आवेदन केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकृत किए जा सकेंगे। नई नीति के अंतर्गत स्थायी निवास के आवेदकों को अब विदेश में ही काउंसलर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस निर्णय से अमेरिका में अस्थायी वीजा पर कानूनी रूप से रह रहे लाखों लोगों के प्रभावित होने की संभावना है। इनमें विद्यार्थी, अमेरिकी नागरिकों के जीवन साथी और विदेशी कामगार शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा है कि उनके पति की गंभीर बीमारी का पता चलने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया। वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेजे त्यागपत्र में सुश्री गैबार्ड ने कहा कि पिछले 1.5 साल से राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद पर कार्य करने के लिए वे बहुत आभारी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका में केविन वॉश ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने जेरोम पावेल का स्थान लिया है। श्री पावेल 2018 से इस पद पर कार्यरत थे। इस अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फेडरल रिजर्व श्री वॉश के नेतृत्व में जनता का विश्वास बहाल करेगा। उन्होंने श्री वॉश को केंद्रीय बैंक का नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य व्यक्तियों में से एक बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे इसके सबसे प्रभावी अध्यक्षों में से एक होंगे। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में लगभग 40,000 लोगों को निकासी के आदेश दिए गए हैं और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यह निर्णय प्लास्टिक के पुर्जे बनाने में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक रसायन के भंडारण टैंक से रिसाव के बाद लिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्र स्तर पर उच्चतम करार दिया है। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसिस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इसके संक्रमण के 82 रोग सामने आए हैं और 7 मौतें दर्ज की गई हैं। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था, साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है और दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी फैल सकती है। इसका उष्मायन काल 2 से 21 दिन तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है, जो बाद में गंभीर जटिलताओं में बदल सकते हैं। समाचार कक्ष से विश्व दर्पण के लिए मैं लवलीन निगम।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। एक रिपोर्ट।
2: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
3: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: चीन के शांशी प्रांत में एक कोयला खदान में कार्बन मोनोक्साइड का स्तर सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाने के कारण 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 मजदूर अब भी खदान के अंदर फंसे हुए हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार ये घटना चांगझी शहर के केन्युआन काउंटी में स्थित ल्यू शेन्यू कोयला खनन में हुई। दुर्घटना के समय खदान में 247 मजदूर थे। बचाव अभियान जारी है और अब तक 201 मजदूरों को सुरक्षित बाहर लाया गया है। स्पेसएक्स ने आज सुबह सबसे बड़े और शक्तिशाली स्टारशिप सुपर हेलीरॉकेट सिस्टम का प्रक्षेपण किया। ये चंद्रमा और मंगल ग्रह के मिशनों के लिए पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य अंतरिक्षयान विकसित करने के प्रयासों में एक और मील का पत्थर है। इसमें सुपर हैवी बूस्टर और ऊपरी चरण के अंतरिक्षयान दोनों में सुधार किए गए हैं। रॉकेट ने अमरीका के टेक्सास में स्थित स्पेसएक्स के स्टारबेस संयंत्र से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इस मिशन में सफल हॉट स्टेजिंग पृथक्करण हुआ। इसमें बूस्टर के पूरी तरह से अलग होने से पहले ही ऊपरी चरण के रैप्टर इंजन प्रज्वलित हो गए। सुपर हैवी बूस्टर ने मैक्सिको की खाड़ी की ओर अपनी निर्धारित अवरोहण यात्रा शुरू की, लेकिन पानी तक पहुंचने से पहले ही हवा में विस्फोट हो गया। बूस्टर के नष्ट होने के बावजूद ऊपरी चरण के स्टारशिप ने अंतरिक्ष में अपनी उड़ान जारी रखी, जिससे मिशन स्टेजिंग चरण से आगे बढ़ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर, प्रधानमंत्री मोदी से आज नई दिल्ली में मुलाकात। ट्रंप प्रशासन ने अस्थायी वीजा पर रह रहे और ग्रीन कार्ड लेने के इच्छुक आवेदकों को अपने देश से ही आवेदन करने का नया नियम जारी किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के प्रकोप के खतरे को राष्ट्र स्तर पर उच्चतम बताया और भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good morning. This is Akashwani. I'm Sunil Verma with the world news. The headlines. US Secretary of State Marco Rubio begins four-day visit to India to call on Prime Minister Narendra Modi in New Delhi this afternoon. Trump administration introduces new rule requiring green card applicants on temporary visas to apply from their home countries. WHO raises risk of Ebola outbreak in Congo to very high at national level. And Indian Army officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step towards strengthening bilateral ties and expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the Kolkata airport. Soon after his arrival, the U.S. Secretary of State visited Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity, and the children's home in the city. Mr. Gore, in a social media post, said, Secretary Rubio will travel to New Delhi later in the day and call on Prime Minister Narendra Modi. According to the U.S. ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties, and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue, Quad, framework. President Draupadi Murmu has said there is tremendous potential for cooperation between India and Cyprus in new and emerging sectors such as semiconductors, space and artificial intelligence. The president was speaking after hosting a banquet in honor of her Cyprus counterpart, Nikos Christodoulidis, and his delegation at Rashtrapati Bhavan yesterday. She said technology and innovation have emerged as key forward-looking areas of the bilateral relationship.
5: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जांची पर की मित्रता आपसे सम्मान साझा मूल्य विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
4: President of Cyprus Nikos Christodoulidis also highlighted the friendship with India.
6: Cyprus and India appear geographically separated by thousands of miles. They differ slightly in size and population, and yet there is an invisible thread that has woven our countries and our people together and has seamlessly connected our countries for centuries.
4: Indian Army officer Major Abhilasha Barak, serving with the United Nations peacekeeping mission in Lebanon, has been honored with the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award for 2025. We have a report.
7: Major Barak is currently serving with the Indian Battalion as commander of the female engagement team in the United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. The recipient is selected annually from nominations submitted by force commanders and heads of mission across UN peacekeeping operations worldwide. With this recognition, Major Barak becomes the third Indian peacekeeper to receive the honor. Earlier, Major Suman Gawani was awarded in 2019 for her service with the UN mission in South Sudan, while Major Radhika Sen received the award in 2023 for her work with the UN Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. India remains one of the largest contributors of troops and police personnel to UN peacekeeping missions across the world. Swati Rukheja, Akashwani News, Delhi.
4: The Indo-Tibetan Border Police, ITBP, has successfully completed its first ever all-women international mountaineering expedition to Mount Everest, marking a historic milestone in the force's mountaineering achievements. We have a report.
8: A 14-member team of ITBP comprising 11 women climbers and 3 technical and support staff summited the world's highest peak on 21st of this month through the South Col route from Nepal side. The expedition was flagged off from the ITBP headquarters on 19th of April. As a part of its Clean Himalaya Save Glacier campaign, the team also carried out environmental awareness activities and collected non-biodegradable waste from the Everest region. Union Home Minister Amit Shah congratulated the team for unfurling the national flag atop Mount Everest. Mr. Shah said that by achieving this remarkable feat in extreme terrain and harsh climatic conditions, the team has upheld ITBP's motto of nation before self. Meanwhile, with this achievement, ITBP has now completed 232 mountaineering expeditions, including 5 successful Everest summits. The force has also scaled 6 of the world's 8,000-meter-plus peaks, including Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Makalu, Mount Lahotse, Mount Dholagiri, and Mount Manaslu. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
4: This is Akashwani. You're listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. The Trump administration has announced a major change to the U.S. green card process, stating that foreign nationals seeking permanent residency will now be required to return to their home countries to apply. We have a detailed report on this.
9: The move, outlined in a policy memo by the U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS, limits approvals from within the United States to only extraordinary circumstances. Under the new policy, applicants for permanent residency, a key step toward U.S. citizenship, will largely need to complete consular processing abroad. The decision could affect hundreds of thousands of people legally living in the United States on temporary visas, including students, spouses of U.S. citizens, and foreign workers. Immigration advocates have warned that the change could separate families for months or longer, as green card processing often takes significant time. A USCIS spokesperson said individuals who provide economic benefits or serve the national interest may still be allowed to apply from within the country. However, it remains unclear whether skilled workers on H-1B visas would qualify for such exceptions. The policy marks a significant shift in the Trump administration's immigration approach, extending stricter controls beyond undocumented migrants to legal immigration pathways as well. Manik Sharma, Akashwani News, Delhi.
4: U.S. Director of National Intelligence Tulsi Gabbard has announced her resignation from the post. Ms. Gabbard said she will step down from her position effective 30th of June after her husband Abraham Williams was diagnosed with an extremely rare form of bone cancer. In her resignation letter to U.S. President Donald Trump, Ms. Gabbard said she was deeply grateful for the opportunity to lead the Office of the Director of National Intelligence over the past 1.5 years. The World Health Organization, WHO, has raised the public health risk of the Bundibyo strain of Ebola in the Democratic Republic of Congo from high to very high at the national level. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said the risk is now assessed as very high nationally, high regionally, and low globally. He added that 82 cases and 7 deaths have been confirmed, but the outbreak is likely much larger, with nearly 750 suspected cases and 177 suspected deaths reported so far. The WHO had earlier declared the outbreak a public health emergency of international concern, while clarifying that it is not at pandemic level. In China, 8 people have been killed and 38 workers remain trapped underground after carbon monoxide levels exceeded safety limits at a coal mine in Shanxi province. According to the state media, the incident occurred at the Liushenyu coal mine in Jinwan County of Changzhe City. At the time of the accident, 247 workers were still inside the mine. SpaceX launched the largest and most powerful version of its Starship Super Heavy rocket system this morning, marking another milestone in its efforts to develop a fully reusable spacecraft for missions to the Moon and Mars. And now, before we close, here are the highlights of the bulletin. U.S. Secretary of State Marco Rubio begins four-day visit to India to call on Prime Minister Narendra Modi in New Delhi this afternoon. Trump administration introduces new rule requiring green card applicants on temporary visas to apply from their home countries. WHO raises risk of Ebola outbreak in Congo to very high at national level. And Indian Army officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And that is the end of this World News Bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपकी दिल की बातें होती हैं, आपकी बातें होती हैं, आपकी पसंद के गीत होते हैं और हम तो सिर्फ एक माध्यम होते हैं। आप किस चैनल के थ्रू हम तक पहुंच सकते हैं, हर बार बताते हैं हम आपको। ईमेल आईडी है हमारा fmgoldairdelhi@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868 68753। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। आप, मैं हूं आपके साथ भावना, और लीजिए फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, इनका हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हमारे पास संदेश आ गया, और भोपालगढ़ छत्तीसगढ़ से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का गाना सुनना चाहते हैं ये।

आकाशवाणी हमेशा हमारी आवाज से अपनी आवाज मिलाता आया है, हम सबके मन को भाता आया है। ये कृष्णा वाटक जी हैं, इनका उत्तम नगर दिल्ली से संदेश आया, बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये कैसे कर लेते हैं, मतलब अलग अलग रंगों में अपने नामों को लिखना, हरा, लाल, पीला, नीला, ऐसे लिख कर भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और पढ़ने में भी आनंद आ जाता है। भाटापारा छत्तीसगढ़ से कुछ ऐसा ही हमें अपना नाम लिखकर भेजा है, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा जी ने। बहुत ही खूबसूरत है आपका संदेश जी, कहना पड़ेगा। इसके अलावा प्रकाश गोगिया जी हैं, इनका भी संदेश हमारे पास दिल्ली से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ताज मोहम्मद जी हैं, लक्सर हरिद्वार से हैं, गुलाम साबिर राही मेहरा जहां भी इनके साथ हैं, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इनका संदेश हमारे पास आया है। ये है मोहसिन हाशमी, इनका संदेश हमारे पास गंजडुंडवारा नई बस्ती से आया है। यासीन हाशमी भी इनके साथ हैं, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी, इन सब का संदेश है ये एक साथ मिला के। इसके अलावा हमारे पास शंभू दयाल जी का संदेश आया है और गांव जाखौत से इनका संदेश हमें मिला है। शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया जी, ये इन्होंने लिखकर भेजा है, तो शुक्रिया जी हमारी तरफ से भी जी। इसके अलावा संदीप मक्कड़ जी हैं, इनका संदेश हमें मिला है, मन्नत मक्कड़ भी इनके साथ हैं और भारत मक्कड़ भी इनके साथ हैं, कमल साहनी भी इनके साथ हैं, पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर पंजाब से इनका हमें संदेश मिला है। बहुत आनंद आता है जब इतने प्यारे प्यारे से आपके संदेश पढ़ते हैं ना, तो मजा आ जाता है। आमिर हुसैन है, बेगम तैयबा शेख है, फौजिया शेख है और कौन है, आहिल हुसैन अरहान और परिवार के सभी सदस्य, इनका भी पटियाली रोड गंज डुंडवारा से हमारे पास संदेश आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ जी का संदेश हमें मिला है और गाना सुनना चाहते हैं ये।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

स्वागत आप सभी का दिल का मेल बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ भावना और हमारे साथ हैं यानी मेल पर जुड़े हुए हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया अरोड़ा परिवार हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा राशिद हुसैन अंसारी साहब हैं हमारे साथ ईमेल के थ्रू जुड़े हैं, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी हाँ, भारत भूषण जी हैं, अंजू श्रीवास्तव हैं, दिव्येंदु भूषण हैं, संस्कृति हैं, पौरुष हैं, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से इनका संदेश हमें मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेक्टर 67 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिटा बजाज का संदेश हमें मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इसके अलावा उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी का संदेश हमारे पास आया है और गाना सुनना चाहते हैं ये।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक बार फिर स्वागत आप सभी का दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम में। बिमला अनेजा और सतीश अनेजा जी कह रहे हैं कि हमारा जरूर शामिल कर लीजिए संदेश, चंडीगढ़ से इनका संदेश हमें मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हो गया शामिल आपका संदेश। सुनील पाठक जी हैं, कमल पाठक हैं, दीपिका मल्होत्रा हैं, गाव्या मल्होत्रा हैं, भाई सुच्चा सिंह पाठक हैं और अनारकली बाजार जगराओं से इनका संदेश हमारे पास आया है। हमारे पास मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, परदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का संदेश हमारे पास मिला है। हमें ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से, और जो गाना ये सुनना चाहते थे वो हम ऑलरेडी सुनवा चुके हैं। 9 बजे फरमाइश में हमारे जो खास श्रोता थे जिन्होंने आकाशवाणी के प्रश्न का उत्तर दिया था, उनका जो गाना पसंद का था वो इनका भी है, मन मंदिर फिल्म का जादूगर तेरे नैना, वो हम सुनवा चुके हैं। इसके अलावा जिला खरगोन उत्तर प्रदेश से हमारे पास संदेश आया है अशोक कुमार वर्मा जी का और उनके सभी साथियों का। बहुत ही खूबसूरती से अपना संदेश ये लिखकर भेजते हैं और गाना सुनना चाहते हैं फिल्म हीरो से ये।

यूं ही आपका प्यार बना रहे, आप हमारे साथ जुड़े रहे। चलते चलते एक संदेश पढ़ते जाते हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश और सर्वत देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना देशमुख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। अब समय हो गया है आपसे इस प्रोग्राम से विदा लेने का, लेकिन 11:10 पर मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन उससे पहले अभी समय है समाचारों का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा।

0: नेता। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। साथ ही व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी तथा हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग बढ़ेगा। अमरीकी राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विदेश मंत्री आज ही नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत रवाना होने से पहले श्री रूबियो ने मियामी में मीडिया से बात करते हुए भारत को एक महान सहयोगी और साझेदार देश बताया। भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल के कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैठक में बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में 30 बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative, reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step towards strengthening bilateral ties and expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the Kolkata airport. Soon after his arrival, the U.S. Secretary of State visited Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity, and the children's home in the city. Mr. Gore, in a social media post, said Secretary Rubio will travel to New Delhi later in the day and call on Prime Minister Narendra Modi. According to the U.S. ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties, and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue, Quad, framework. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day until tomorrow. Earlier, the deadline was today. CBSE said the decision was taken after its website experienced unprecedented traffic over the past few days, along with several attempts of unauthorized interference, making it prone to disruptions. The board informed that students will have up to 2 days to apply for the next stage of verification of marks or re-evaluation after receiving the scanned copy of their answer books. Petrol and diesel prices were increased by up to 91 paise per litre today, marking the third hike in less than 10 days. In Delhi, petrol price has been increased by 87 paise to 99 rupees 51 paise per litre, while diesel has gone up by 91 paise to 92 rupees 49 paise per litre. This is the third revision in fuel rates after a 3 rupees per litre hike on the 15th of this month, followed by a 90 paise increase on the 19th. Overall, prices have risen by nearly 5 rupees per litre in recent days. The increase comes amid a sharp surge in global crude oil prices following the Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. Indraprastha Gas Limited has increased the price of compressed natural gas, CNG, by 1 rupee today. After the price hike, the new rate for 1 kilogram CNG in the national capital is 81.09 rupees. Indian Army officer Major Abhilasha Barak, serving with the United Nations Peacekeeping Mission in Lebanon, has been honored with the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award for 2025. Major Barak is currently serving with the Indian Battalion as commander of the Female Engagement Team in the United Nations Interim Force in Lebanon. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow today at 7:30 this evening. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM कोर चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम हर बार आपको कहीं घुमाने ले जाते हैं, या कहें कि आपके साथ घूमने जाते हैं। पंचगनी महाराष्ट्र का एक खूबसूरत हिल स्टेशन, आज इसी की तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे हम। रेडियो तस्वीर, आपके साथ रहूंगी मैं भावना।

0: अपने नियुक्ति पत्र पाकर सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाओं से विकसित भारत की यात्रा को मजबूती देंगे। इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपना स्वागत संबोधन दें।
1: परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपने बहुमूल्य समय में से कुछ एक क्षण निकालकर आपने हमारे बीच रह करके हमारी हौसला अफजाई की है, आपका बहुत बहुत आभार। 22 अक्टूबर सन 2023 को आपके द्वारा प्रारंभ किए गए रोजगार मेले के इस क्रम में आज हम 19वां अंक लेकर के उपस्थित हैं। यदि अभी तक हुए 19 रोजगार मेला के कार्यक्रमों का आकलन किया जाए तो समझ में आता है कि रोजगार मेला के इस क्रम के परिणाम स्वरूप जहां एक ओर नियुक्ति सरकारी नौकरियों में होने वाली नियुक्तियों में संख्या में वृद्धि हुई है, वहां साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता भी आई है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें भी टाइमलाइन अथवा समय सीमा का अनुशासन बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह कि उम्मीदवारों का नियुक्ति प्रणाली में विश्वास भी बढ़ा है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि रोजगार मेला के माध्यम से नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों का मेरिट भी श्रेष्ठ रहा है। यह सब इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में गत कुछ वर्षों में और 2024 के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में अनेकों रिफॉर्म्स लाए गए हैं। आपने लाल किले से आह्वान किया था, इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, भेदभाव और पक्षपात की शिकायतें जाती रही। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी अनेकों रिफॉर्म्स लाए हैं जिसके परिणाम स्वरूप रिक्रूटमेंट साइकिल की अवधि में या अवधि काल में औसतन 15 महीने से घटकर अब 8 महीने हो गया। अब परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी हो रही है। उम्मीदवार के लिए फिजिकल डोजियर की जगह इलेक्ट्रॉनिक डोजियर उपलब्ध कराया जा रहा है और SSC पोर्टल पर लॉग होकर के उम्मीदवार अपने एग्जामिनेशन सेंटर का इंतखाब भी कर सकता है। परीक्षा के फौरन बाद आंसर की उपलब्ध करवाई जाती है और यदि किसी उम्मीदवार को कोई शिकायत हो या शंका हो तो वो अपनी ग्रीवेंस भी दर्ज कर सकता है। और अभी हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक और इनोवेटिव प्रोसेस प्रारंभ किया है और इस प्रैक्टिस का नाम है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। अर्थात यदि कोई उम्मीदवार किसी कारणवश इम्तहान में अपीयर नहीं हो पाता तो उसकी वैकेंसी खाली ना जाए, इसलिए अगले उम्मीदवार को भी मौका दिया जा सकता है। इसी तरह UPSC ने यूनिफाइड वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड विद आधार एंड डिजी लॉकर को इंट्रोड्यूस किया है। दिव्यांग उम्मीदवारों को सेंटर ऑफ चॉइस की सुविधा प्रदान की गई है। प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पर चढ़ा दी जाती है। और अभी पिछले ही साल प्रतिभा सेतु, यानी वो उम्मीदवार जो सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी आखिर में किसी कारण सफल नहीं हो पाते, उनका प्रोफाइल इस पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाता है ताकि पोटेंशियल इंप्लॉयर्स उनको एंगेज कर सके। नियुक्ति के बाद अपनी जिम्मेवारी हेतु अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए मिशन कर्म योगी प्रारंभ किया गया है जो अब एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी का रूप धारण कर चुका है। इस मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा। आपके रोजगार मेला के इस प्रयोग से प्रेरित होकर के अनेकों राज्य सरकारों ने भी प्रांतीय स्तर की नियुक्तियों के लिए इस प्रकार के रोजगार मेला का क्रम प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में अभी तक हुए रोजगार मेला के माध्यम से 5.5-6 लाख से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। इसका नतीजा यह भी हुआ है प्रधानमंत्री जी कि देश भर में युवाओं में एस्पिरेशनल सर्ज देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे नौजवान सरकारी नौकरी के बाहर के विकल्पों की तरफ भी रुझान करने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर स्टार्टअप्स की संख्या 2,26,719 तक पहुंच गई है और इन स्टार्टअप्स के माध्यम से जनरेट होने वाले जॉब्स की संख्या 23 से 24 लाख, पेटेंट्स की संख्या 1,10,000 से अधिक। हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं जहां तक स्टार्टअप्स का ताल्लुक है और छठे दर्जे पर खड़े हैं दुनिया में जहां तक पेटेंट्स का ताल्लुक है। और महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें से 55% से अधिक पेटेंट रिजाइडिंग इंडियंस के हैं, यही पले बले, यही उनका शिक्षण प्रशिक्षण हुआ, यही शोध किया और यहीं से पेटेंट दर्ज करवाया। आज भी इस समय देश के 47 भिन्न भिन्न स्थानों पर इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। पहले की तरह आज भी आपके द्वारा बटन दबाते ही 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र एक साथ जारी कर दिए जाएंगे, जिनमें से 50% से अधिक रेल विभाग से ताल्लुक रखते हैं, जो इस बात की भी निशानदेही करता है कि किस तेज रफ्तार से मुल्क में आज रेल का विस्तार हो रहा है, खासतौर उन इलाकों में जहां कभी किसी ने कल्पना ना की थी। अभी पिछले ही साल आपने दरियाए चन्हाब पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का लोकार्पण किया और कश्मीर घाटी को जाने वाली वंदे भारत की फ्लैगिंग ऑफ भी की। अंत में केवल इतना कहना है कि आज जबकि हरेक योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को मद्देनजर रख करके की जाती है, तो ऐसे में ये युवा जब आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे तो साथ ही साथ उन्हें सन 2047 के भारत के निर्माण की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। परमात्मा उनको सामर्थ्य दे, उनको क्षमता दे, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज

समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी, और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल, एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है, यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स,

और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है, उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस ना

आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं, उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है। रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इस दिन मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है।
मैं किसी का दोस्त नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक में हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटी को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रख

स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है। मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत

0: अहमियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा, जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे तो यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देख तुल, अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

0: सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: दक्षिणी चरांगे एफएम गोल्ड डेली डिग्रिंग गुन सनाजाज मीडियम वेव किलोहर्ट्स शिक्षतोंग अपचुंग अक्सुम यंग ना मीटर्स पर निप के आगे चुके बजितांग शुजुरगु यंग एफएम मेगा हर्ट्स के अनाचिक तांग शुजुर चिगिका नजे आकाशवाणी लेने जुन्जिक तांग निमे चुत्सो चुंगे शादु कसता चुत्सो चुंगे जब फेट सुखपा फिल्म लूरिक सनाजात इन अस्मोन ला कुछ दिन ने कहा फिल्म लू उदित नारायण ने सनाजात लुरसोमकन अनन बख्शी यंग लोयंग श्रीकन निखिल विनय

कसताई सिंह ने चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्मेलू, आलका एग्निकतांग सोनू निगम ने सनजाद, समीर इलुआयांग श्रीकन अनुमलिक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission, information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit, samriddh Bharat.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit, samriddh Bharat.

0: ताक्सांगे जरांगे टुंडु प्यांटो तां ट्रोपा गुने सलकने लुरिक सनजाच अजे आकाशवाणी लेने जुंजिक ताइन निमेचु सो चिक छादु कसत्ता आकाशवाणी देने
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरीकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जय हिंद फौजी भाइयों, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है दिल क्या दिल ने कहा फिल्म से, शान और आलकर्णी की आवाज़ों में। गीतकार है संजय शील और संगीतकार है हिमेश रेशमिया।

अगला गीत सुनते हैं डबल धमल फिल्म से, सुनीत चौहान और साथियों के आवाज़ों में। गीतकार और संगीतकार है अनन राज अनन।

चलिए अब सुनते हैं सनम रे फिल्म से गीत अरिजीत सिंह और अमल मलिक की आवाज़ों में। गीतकार है मनोज मुंतशिर और संगीतकार है अमल मलिक।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.
2: फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं जय हो फिल्म से अरमन मलिक और साथियों के आवाज़ों में। गीतकार है शबीर अहमद और संगीतकार है अमल मलिक।

अभी आप सुन रहे थे क्रिश फिल्म से गीत, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीतकार थे नसीर फराज और संगीतकार थे राजेश रोशन। फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं गैंगस्टर फिल्म से के को। गीतकार है साईद कादरी और संगीतकार है प्रीतम।

फिल्म गीतों के अंत में फौजी भाई आप सुनते हैं दिल तो बच्चा है जी फिल्म से मोहित चौहान को। गीतकार है नीलेश मिश्रा और संगीतकार है प्रीतम।

0: जे आकाशवाणी लेने जुन जिक तांगिन नि मे चुसो चिक तांग स्कर्मांग अप छु छादु कसत आकाशवाणी दिल्ली ने स्कूल ना उर्दी नाना सुल यांग मीडिया न्यूज तांग दो पहर समाचार सनजात।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 51,000 से ज्यादा लोगों को तकर्रीरनामे सौंपे। वजीर आजम ने कहा कि भारत नौजवानों को आलमी सतह पर रूशनास कराने और मौके पैदा करने के लिए दुनिया के कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बिहार हुकूमत अगले 5 वर्षों के दौरान रियासत में 1,00,000 असातिज़ा को मुलाजमत देगी। CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहानात की जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 मई कर दी है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे। WHO ने कांगो में इबोला की बुंडी बुगियो किस्म के खतरे को बहुत ज्यादा के जुमरे में शामिल कर दिया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों और तंजीमों में मुलाजमत हासिल करने वाले नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रीरनामे तकसीम किए। पूरे मुल्क में 47 मकामात पर इस रोजगार मेले का इनेकाद किया गया था। मुलाजमत हासिल करने वाले नौजवान जिनको पूरे मुल्क से चुना गया है वो वजारत रेलवेज, वजारत दाखिला, वजारत सेहत और आला तालीम के महकमे समेत दीगर कई वजारतों और महकमों में शामिल होंगे। रोजगार मेले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के तरक्की के सफर में शामिल होने के लिए बेकरार है। जनाब मोदी ने कहा कि मौके और मुलाजमत दस्तियाब कराने और मुल्क के नौजवानों को पूरी दुनिया से रोशनास कराने के लिए भारत दुनिया के अलग अलग मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वजीर आजम ने इस बात को उजागर

0: जनाब मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के अज़्म के लिए हर भारतीय काम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के लिए मुलाजमत के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएस कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला में 19वां रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में 281 नए मुस्तफिदीन को तकरीरी नामे तकसीम किए गए। आरसीएस कपूरथला में पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप पुरी ने प्रोग्राम की सदारत करते हुए बताया कि रोजगार मेला एक ताकतवर कौमी सरमाया बन गया है जो बर वक्त और शफाफ मुलाजमत को यकीनी बनाता है।
2: ये हमारा देश भर में रोजगार मेला ये एक पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए। मोर देन 5 लाख यंग इंडियंस हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री 4.0, जॉब रोल्स एज डेटा इंजीनियर, मशीन लर्नर, लर्निंग इंजीनियर, क्लाउड स्पेशलिस्ट एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट। India is preparing our young people to provide leadership in that area.
0: बाद में उन्होंने 93 नए मुलाजमत हासिल करने वालों को तकरीरी नामे सौंपे। पटियाला में मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 188 नए उम्मीदवारों को तकरीरी नामे सौंपे गए। पेट्रोलियम कुदरती गैस और सयाहत के मरकजी वजीर ममलिकत सुरेश गोपी ने तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का इफ्तिताह किया। 19वें कौमी रोजगार मेले के हिस्से के तौर पर इसका एहतमाम किया गया था। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू करदा रोजगार मेला भर्ती मुहिम से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है और इसका मकसद युवा शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति का रूप देना है। उन्होंने कहा कि तकरीरनामे एक मुकद्दस फरीजे का आगाज है। जनाब गोपी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वह अपनी तवानाई कौमी तामीर में इस्तेमाल करें और विकसित भारत के नस्बुलैन को पूरा करें। पार्लियामानी उमूर और इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलिकत एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने 2047 तक विकसित भारत को अमली जामा पहनाने का तहैया कर रखा है। उन्होंने ये बात चेन्नई में ICF रोजगार मेले से खिताब करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क डिजिटाइजेशन, रोजगार के मौके, बुनियादी ढांचे और कारोबार को आसान बनाने के मामलात में तेजी से तरक्की कर रहा है। डॉक्टर मुरुगन ने बताया कि वजीर आजम की यकीन दहानी के मुताबिक अब तक मरकज ने 12 लाख रोजगार मुहैया कराए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि अगले 5 वर्षों के दौरान 1 लाख असातिज़ा को मुलाजमत दी जाएगी। तालीमी महकमे की एक आला सतह की जायजा मीटिंग के दौरान वजीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हर साल कम से कम 25,000 असातिज़ा को मुलाजमत दी जाए। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की तकरीरी से मुतालिक नोटिस हर साल जुलाई के महीने में जारी किया जाएगा। उधर वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने बताया कि वजीर आला के ऐलान के बाद असातिज़ा की तकरीरी के इम्तहान TRE 4 के चौथे दौर से मुतालिक खदशात अब ख़त्म हो गए हैं। उन्होंने इत्तला दी कि महकमे तालीम जल्द ही खाली असामियों का जायजा लेकर मुलाजमत के लिए ताज़ा दरख्वास्त देगा। बिहार हुकूमत ने आज 21 जून को होने वाले NEET UG के फिर से इम्तहान में शिरकत करने वाले सभी तलबा के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि रियासत में नीट के सभी उम्मीदवारों को सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र करने की इजाज़त दी जाएगी। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहान की जवाब की कॉपियों की स्कैन की हुई नकल हासिल करने की आखिरी तारीख 24 मई तक के लिए इजाफा कर दिया है। इससे कबल इसकी आखिरी तारीख आज यानी 23 मई तक थी। CBSE ने बताया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान इसकी वेबसाइट पर गैर मुतवक्के ट्रैफिक आने और गैर कानूनी तौर पर वेबसाइट में मुदाखलत करने की वजह से यह फैसला

0: किया गया है। बोर्ड ने बताया कि तलबा जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल होने के बाद 2 दिन तक फिर से जायजे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने 4 रोज़ा भारत दौरे पर आज कोलकाता पहुंच गए हैं। ये भारत का उनका पहला दौरा होगा जो अमरीका और भारत के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा। जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी और भारत बहरुल काहिल हिकमत अमली जैसे शोबों में तआवुन को वसअत देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गौर ने बताया कि जनाब रूबियो दिन में नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आलमी सेहत तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो में एबोला मुल्क भर में फैल जाने के अंदेशे का इजहार किया है। इस तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम गेब्रेसस का कहना है कि इस वक्त इस वायरस के कौमी सतह पर फैल जाने का बहुत ज़्यादा, इलाकाई सतह पर ज़्यादा और आलमी सतह पर फैलने का कम अंदेशा है। आज शाम लखनऊ में IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में लखनऊ जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 51,000 से ज्यादा लोगों को तकर्री नामे सौंपे। वजीर आजम ने कहा कि भारत नौजवानों को आलमी सतह पर रोशनास कराने और मौके पैदा करने के लिए दुनिया के कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बिहार हुकूमत अगले 5 वर्षों के दौरान रियासत में 1,00,000 को मुलाजमत देगी। CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहान की जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 मई कर दी है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे। WHO ने कांगो में इबोला की किस्म के खतरे को बहुत ज्यादा के जुमरे में शामिल कर दिया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments. Says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela, the Prime Minister emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. Mr. Modi noted that the nation has placed its trust in its Karma Yogis, and it's now their responsibility to honor and strengthen that trust through their dedication, conduct, and everyday actions.
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: मिस्टर मोदी हाइलाइटेड दैट द वर्ल्ड इज ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ जर्नी। The Prime Minister said that the country is also partnering with various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ-साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: Mr. Modi added that every Indian is working with a commitment to making India Viksit Bharat by 2047, and to achieve this, the country is investing in several sectors. The Prime Minister highlighted that new employment opportunities are being created for the youth of the country.
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग-अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: The Prime Minister encouraged the new appointees to make the most of the iGOT Karma Yogi platform, noting that it would help them grasp their responsibilities with ease. Mr. Modi expressed confidence that these new appointees would contribute to the nation's progress and that their work and decisions would play a key role in realizing the vision of Viksit Bharat. In Rajasthan, employment fairs were organized in Jaipur, Jodhpur, Ajmer and Bikaner, where appointment letters were distributed to more than 1,100 youths. Railway Minister Ashwini Vaishnav attended the state-level Rozgar Mela held in Jaipur. Addressing the gathering, Mr. Vaishnav said that recruitment for more than 1,60,000 posts in the railways is currently underway, with over 4 crore candidates participating in the process. He said that earlier, recruitment procedures used to take several years to complete, causing delays for job aspirants. However, with the introduction of the annual recruitment calendar system, efforts are now being made to complete the process within a fixed time frame.
3: Railway mein aaj kareeb kareeb 1 lakh
4: work is currently underway for approximately 1,60,000 recruitments. You must be aware that previously recruitments used to come out once every 8 to 10 years or once every 4 to 5 years. That was the era of the Congress during the time of the UPA. When Modi ji took responsibility, he compressed that time, and after that, some time ago, an annual calendar system was introduced and a clearly defined timetable was made.
3: Annual calendar ki vyavastha ki.
1: In Punjab, the 19th Rozgar Mela was organized at two places, including Rail Coach Factory RCF Kapurthala and Patiala Locomotive Works Patiala today, where appointment letters to 281 new beneficiaries were distributed. At RCF Kapurthala, Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Puri, while presiding over the program, said that the Rozgar Mela has become a powerful national institution which ensures transparency and merit-based time-bound recruitment.
5: ये हमारा देश भर में रोजगार मेला ये एक पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए मोर देन 5 लाख यंग इंडियंस हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडस्ट्री 4.0 जॉब रोल्स एज डेटा इंजीनियर मशीन लर्नर्स लर्निंग इंजीनियर क्लाउड स्पेशलिस्ट एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट India is preparing our young people to provide leadership in that area.
1: Union Minister of State for Parliamentary Affairs and Information and Broadcasting, L. Murugan, has said that the government is committed to realizing the vision of Viksit Bharat by 2047. Addressing the Rozgar Mela at ICF Chennai, he said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the country is witnessing rapid growth in infrastructure, digitization, employment opportunities, and ease of doing business. Dr. Murugan said that the centre has so far provided 12 lakh jobs, fulfilling the assurance given by the Prime Minister. He said the government's success is driven by the mantra of reform, perform and transform. He urged the citizens to stay informed about various welfare schemes and programmes of the government. We spoke to some of the beneficiaries who were given appointment letters at today's Rozgar Mela.
6: My name is Sakshi Verma and I'm from Raipur, Chhattisgarh, and I'm very grateful to ICF and PM Narendra Modi and Government of India that I get this opportunity through cultural quota. As a classical dancer, we get this job is very difficult and I'm very grateful to them. So thank you, ICF.
7: My name is Santakishore. I'm from Trivandrum, Kerala. I wrote this exam some years back, but now I got posted and now I'm very happy. I thank our central government for providing such an opportunity. I will take this not only as my work, but a service to the nation.
8: My name is Tejinder Singh Kanda. I am from Bathinda, Punjab, and I am selected for junior associate in State Bank of India. I am so grateful for the central government giving me the opportunity to serve the nation.
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website, www.newsonair.gov.in, and download News on AIR app. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary has announced that 1 lakh teachers will be recruited in the state over the next 5 years. During a high-level review meeting of the Education Department, the Chief Minister directed the officials to ensure the recruitment of at least 20,000 teachers every year. He said that the notification for teacher appointments will now be issued annually in the month of July to streamline the recruitment process. Meanwhile, Education Minister Mithilesh Tiwari said that the Chief Minister's announcement has ended the uncertainty surrounding the fourth phase of the teacher recruitment examination, TRE4. He informed that the Education Department will soon assess vacant teaching posts and send a fresh requisition for further recruitment. The Bihar government has announced free travel on state-run buses for all students appearing for the NEET UG re-examination scheduled on June 21. In a social media post, Chief Minister Samrat Chaudhary said all NEET candidates in the state will be allowed to travel free of cost on government buses. The Chief Minister also appealed to district administrations, temples and non-governmental organizations to help arrange drinking water and sattu, a flour made from dry roasted pulses and cereals, for students and their parents at bus stands, railway stations and other major locations. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day until tomorrow. Earlier, the deadline was today. The CBSE said the decision was made after its website experienced unprecedented traffic over the past few days, along with several attempts of unauthorized interference, making it prone to disruptions. The board informed that the students will have up to 2 days to apply for the next stage of verification of marks or re-evaluation after receiving the scanned copy of their answer books. The CBSE has advised candidates to make use of the extended timeline and complete the process accordingly. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a 4-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step towards strengthening bilateral ties and expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology, and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the Kolkata airport. Soon after his arrival, the U.S. Secretary of State visited Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity, and the children's home in the city. Secretary Rubio will call on Prime Minister Narendra Modi in New Delhi today. According to the U.S. ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties, and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue Quad framework. Tomorrow, Mr. Rubio will hold talks with External Affairs Minister S. Jaishankar and attend the U.S. Embassy's Independence Day celebrations in the national capital. The World Health Organization, WHO, has raised the public health risk of the Bundibugyo strain of Ebola in the Democratic Republic of the Congo from high to very high at the national level. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said the risk is now assessed as very high nationally, high regionally, and low globally. He added, that 82 cases and 7 deaths have been confirmed, but the outbreak is likely much larger, with nearly 750 suspected cases and 177 suspected deaths reported so far. The WHO had earlier declared the outbreak a public health emergency of international concern, while clarifying that it is not at the pandemic level. Indian Oil has reassured customers and the general public that there is no overall shortage of petrol and diesel in the country. In a statement, the oil marketing company said that the current situation being witnessed at certain retail outlets is highly localized and temporary in nature, arising due to local demand-supply imbalances and redistribution of sales patterns in select areas. Indraprastha Gas Limited, IGL, increased the price of compressed natural gas, CNG, by 1 rupee today. After the price hike, the new rate for 1 kg CNG in the national capital is 81 rupees and 9 paise. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening. The match will start at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red warning for heatwave to severe heatwave conditions over East Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. According to the IMD, heatwave conditions are expected to persist over large parts of northwest, central and eastern India over the next 6 to 7 days. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over the next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned copies, photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. US Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
9: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे कहा भारत युवाओं को अवसर रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले रोजगार मिले उनका सामर्थ्य खिल उठे साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले
9: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
9: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है, यही स्पिरिट यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
9: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे डिजिटलीकरण रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
10: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
9: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
11: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
9: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहाँ 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
9: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा 30वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
12: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: Medium wave kilohertz 695 yang nanometers band ngip kya ge chuk ebji tang shuzurgu yang FM megahertz gyanak chik tang shuzurji ka ngaje akashwani leni ijunjik tain ngime chuzud nis na pet chadu kasata chuzud nis tang skalma ngap chunga chukpa lurik sanchez la pulin sngon la lobzang tandari salkane ilubu sanajad

0: Gerang e lobzong tandari salkani logic sanatats.
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कसताई सिंह ने पद्म दोषितों सेवा पल जुड़े जल्द करने लुरिक सनजात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: galtes tena las po chona diga no ta yoga chachis ne manga phantos ma ayo tenogle
1: kasale otyo nga ta na common ji dukhala limi gune nga ya yoga mani chi je nga to ne pito chu palas chen du ga mankha nga ta gaung gul la la le tene ye last nga ti chus de no lekin last chu kan be particular last pe nga ta samshi yoga phantos ta te samshi thoba manu khala le yoga nga tang asan ji chuat na te asan be nga ti pura zuk space cha nang ruspa nang hale tissues nerves zera nok pa te changme changme ka phantos thoba no khala le tena chuk la nga ta meditation chu achi nga ti loose nang sims nyam po borte chu nok pa baki last kuni nang nga ta body nga ta involve yot kya nga ta mentally presence me kya nga ta te zuk focus nyam po chama no khala le त्यो संस्पासङ योगे नकुगा मतंग बॉडी नंग माइन्ड बुङिसका न्याम पोसुला नक माता उक्स नेंचेस नेत नंग स्टेल कम्पा लक्पा गुलचे सुपाची छमाङाति माइन्डफुली जेन पता हलरि माइन्डफुली जोन पत्ते
0: फान्तो
1: उनाले सिम्बा जगा चिकचे बोर्ते जुक्सपु नंग माते सिङिङ नंग लुस बुङिसका न्याम पो बोर्ते जुआचे तेबे फान्तोसपु चेक माङार ग्यो के कजुङाति जिङि कलास जुआदो या रंग रंग सुजे तला सु के पहलले ते लास चोकने संग माङा इफ योगा चोचेस पिगना मा फान्तोस छिन मोय नोगले
0: कसा लेते जुन नि छेस नि सु सखशे गाता गदा जमनि छिल दने योगा जक्सिस ते तालो छु चोङा जिङाता छेन जिक तंग एनो तेने ते बोस लातरुमा गा मिंगचन ग्यो चुकचेस मिमास कुनि जुसपो खंथस पो बोस चुकचेस सेम खम चंस पो बोस चुकचेस इफ या इउ गता हागोस पेचेस पे सिन जिक तंग इनोपा त्यो संग हाला देने जक गेस दे देंग ता हिंदे डे का ओन जिन जिक ता टलिक ता देन जिक इनोपा ते थोक पिना निजा एज ए इंस्ट्रक्टर कुनि जुनंग या निजे व आयुष लोन खुंग शोक न जुनंग या निजे रा दक्सी योगा एंड मेडिटेशन वेलनेस सेंटर ए शोक ने मिमास कुनि थोक नंग हगोस पेलचेसे तोगा चिरिग जादिनले
1: कसाचले ता इंटरनेशनल योगा डे बो खेतन नंगा ता 2015 न्या मास्टर सोंस तनो खलाले काओ खेतन नंगा ता ता गुमा ता इ योगा बुंगा ता ग्यागर ने बिन कान जि खलले ग्यागर इ जुक शि इन जरनो
0: नोकल जि
1: कसाले नोकल जि इन जनो तने तेओ ग्यागर शि पो छु पा लुज मा को जिक्सतेन गंग प हला सु छंगमा फान थोस गो जेते माता इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सिस तनो खलाले ता लो चुक शि चुक नि छानो लोजुम योगा देश चिन छानो कावे जस्ते मिगुनि नङा योगे नङ कुमाङा एवियरनेस छिन नङ नो ए योगे फान्तो सङ लेनि नङ नो हलाले चाइ थुगु जिन्दो चाइ छिमि जिन्दो सुजि गिनङ ता तालु स्कोर बुङे जिना जे टिया जादत नङ जे इका इन्टरनेशनल डे अफ योगे फिया मिगुनि स्कोर फिया चिजिक चुन योद मोलाद ना तने हेन्डे डेस काउन्ट डाउन बोतो दुले नङ नो हलाले देने गाजा दक्सा नेशनल आयुष मिशन ने छोक्स ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नंग तने मुरारगी देसा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जितियोत क्या है बिल्ड जितियोत क्या छंगमे जुंगबेला ते ऑनलाइन योगा कैंपेन जिक टूलिन योते नो याले ते बिना कु छंगमा मंगपो थुसंग थुसे नि योते नो छंगमे ते फांतोक संग ने नि योते नो काउ खेते नंग रिंग मेट बाय नो याले छंगला तंगस ते नो काउ मिगुनला फांतोक शेसिफिया tena tsogs la tening aje offline yoga class ang rang rang center ka shulin yot tenok le sujik dot pa yot nang shkyot na dikst tenok tene mi mang poshko de na enok thu se na enok ya le tebe phantos bole ni nang inok le ta tening ahe e countdown jete ngaje e national ayush mission e center ngi jot le ka khet tenang chipu lamdon school ay nok chipu thangit school ay nok tebe ka ngaje rang rang instructor dukst te sujik shkyot dat nang chai school e thugu jigindo ya gerganj jigindo ya lachet pa jigindo man patne tena dal dal jo kan thakore halale mata mi sujik shkyot dat nang ngaje yoga classes offline classes chule nang no ya le te ho khet nang ngaje maqsad bo ngaje intention bo mi guni nang ku ayoge एवियरनेस पो थोप चुकचे जंग योगे फांतोस पो सम न्यंतु मिमांग पो छु पालेप चुकचे सि सुंदुस जे नंग इनले
0: कसा तशिले तांगा ता योगा जुआ चिंग न्या पो दक्सिंग न्या तांग काउंट डाउन जुआ चिंग न्या पो या जमनी छिल दने योगे जक्सिया चिंग न्या पो तिने जक खाचि गिर गेफ मालुस ता तने यु न ता मिचे खाक चि खाला ले जक तुंग मिचे गा जुंग न ता खजि जाचे सि न ता अन डुलचे सि इन ला जाचे चे सि ते जुक सि न ता जक ता ला सि गुरा जोख सि गा तने योगा न गुम गप चस पो जक तुंग न ता न मन मिचे खाक चि गु सुक चे से पिया नेरा चि मोल इंसान कन लन गेस ला कासा
1: nge san kan nal nge zla inna was which is in ye jagunta international yoga desert pa chang ma healing shi shura no khala le tena ja khachi chang ma yoga chwa no te ja po chang ma yong se yoga chono tena chi chi po chu pa maduga international yoga day chu pa maduga tes ting nang ta diring nga tang dulen nang yote no online classes ang dulen yote no offline classes ang dulen yote no te chu pa nga tang yoga day chu pa

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission. Information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.
2: Kasata lobzong tandar esalkani junglujik sanazad.

कसोता सात सात फिल्मेलू जगजीत सिंह दंग चित्रा सिंह उन्नीस सन आजाद लोस्तोम कन जावेद अख्तर दंग लुयांस डिक्कन कुलदीप सिंह।

कलकत्ता कर्ज फिल्मेलु मोहम्मद रफी ने सनाजत लुर सोमकन आनंद बख्शीदा लुयांस टिक्कन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दसवीं जरा जिंगपे सुस्का दे डिग्री में सन आजाद डिग्री में फुलकन इन पेन गुलाम आवाज या डिग्री में कोटिक जत कन इन पेन सोना माचुक गजे आकाशवाणी लेने जुन जेगता है।

मीडियम वेव 284.9 मीटर यानी 1053 किलो हर्ट्ज़, FM 101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं। शाम के 6:40 हो रहे लीजिए प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम।

जय हिंद फौजी भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मन पसंदीदा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में। फौजी भाई इस वक्त के कार्यक्रम में सुनेंगे फिल्मी गीत, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं विवाह फिल्म से गीत, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में, गीतकार रविंद्र जैन और संगीतकार रविंद्र जैन।

लीजिए अब सुनिए बचना ए हसीनो फिल्म से गीत, के और शिल्पा राव की आवाज़ों में। गीतकार अनविता दत्त गुप्ता और संगीतकार विशाल शेखर।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat.
1: लीजिए अब सुनिए ओमकारा फिल्म से गीत सुखविंदर सिंह की आवाज़ में, गीतकार गुलजार और संगीतकार विशाल भारद्वाज।

लीजिए अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए मोहब्बतें फिल्म से गीत। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार जतिन ललित।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मजे आकाशवाणी लेने जुंजिकतन फितो जतो दुन नमस्कार मजिप चुचा कसता आकाशवाणी श्रीनगर ने उर्दिन अनसुलदान तबसरा सनसात।
2: मुफ्त बिजली योजना, फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। घर घर

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Tsering deshi dang thopa nesal kani ijung lubang sanazad.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.
2: Sonom sangmodang topa ni selkani ipot pelubang sanazat.

0: Dalsan yara sonum san bodan topan isal kani pot pelurik san azaz. Ngaji Akashwani le ne jun jiktan. San ichi sot gyat tans kar majib chu jangan chaduk kasa ta Akashwani Delhi ne skon la samacha san diya News 9 yans ting ne urdi nanar sul san azaz.
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा सेल्फ

0: रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म, नीतिगत सुधार भी किए गए। एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
1: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
3: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Center asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Teerth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral